0: प्राथमिकता।
1: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: Extreme energy drink.
1: सेनेटरी सामान
2: अधिकारी सबलेस
1: बजर पेंट
2: अधिकारी सबलेस
1: धारा फिटिंग
2: अधिकारी सबलेस
1: टाइल मार्बल
2: अधिकारी सबलेस
3: ए दाई के को नाराबाजी हो दाई
4: अधिकारी सप्लायर्स को बारे में जानकारी दिदै हिडेको बहिनी
3: के हो लौन त हामीलाई नि भन्दिनु न
4: ल सुन्नुस् बहिनी बर्जर रङको आधिकारिक विक्रेता अधिकारी सप्लायर्स मा धारा फिटिङ सेनेटरी नेपाटप को पीपीसी पीपीआर सीबीसी पाइप ट्याङ्की टोयलेट को प्यान पानी तान्ने मोटर कालो पाइप मार्बल ग्रेनाइट टाइल पाइनको साथै पाइप फिटिङ मा 50 वर्ष ग्यारेन्टी बाथरूम फिटिङ मा 10 वर्ष ग्यारेन्टी र दक्ष प्लम्बर तथा पेन्टरहरू द्वारा

हे कुमार जी, हजुर का मुखार बिन्दुबाट धेरै कुरा सुन्ने अवसर पाए। प्रभु तीस पछि का कुरा के भए? संहारकर्ता श्री महादेव को हालत कस्तो भयो? सती देवीले कसका गर्भमा वास लिए? श्री महादेव र पार्वतीको विवाह कसरी भयो? आदि कुरा जान्न निकै उत्सुक छु प्रभु, आज्ञा हो।